क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।

मेहमा किसे किसे पुकारिए किसे किसे पुकारिए जवानी आय मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Radio Fazza, for all your information, communication and entertainment needs.
8: Radio Fazza.

0: So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays.
4: Foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा.
7: यू आर लिस्निंग 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Azar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That. ठहरिए जरा. ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
4: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
5: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
4: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
5: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
4: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने
5: चले उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
4: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
5: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

0: commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन
7: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066969। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

न मिलकू न तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार। Venom,

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

ना कोई और लिखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है, बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती।

यह कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

मलकुना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔
1: It's commercial time.
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: मिलखूना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।
1: Phantom of Music.

मौला जाने, मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है, बिखरता है वही।

से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, वापिस नहीं।

हाँ, एक बार फिर आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए। खूबसूरत सा कलाम था इनाब तू कुजा मन कुजा, बहुत ही रूह परवर कलाम, आपने भी इस कलाम को एंजॉय किया, मैं भी आपके साथ हूँ। सामीन मैं दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हमारे साथ चल रही है, इबादत हमारा टॉपिक है आज का जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के हवाले से, और एक ज़बरदस्ती चीज़

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फतह 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदा कर आई उसे खुश आमदेद कहते हुए। तो जनाब ये था खूबसूरत हमारे दरमियान हाई लोन्टी कमर्शियल ब्रेक। बात में कर रहा था इबादत पे और इबादत की जो खसलत है, इबादत की जो बेसिकली निशानी है वो क्या है कि इंसान अपने अखलाक को भी बेहतर करता है, इंसान अपनी सोच को भी बेहतर करता है, इंसान अपने जाविये अखलाक को बदल देता है और इंसान कोशिश करता है कि हम किसी ना किसी तरीके से उन चीज़ों को मोल्ड करें, उन चीज़ों को पहचानें जो चीज़ें हमसे यकमुश्त गायब हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, हमारी नज़रों से ओझल हो चुकी हैं, हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है, हमें उन चीज़ों का पास नहीं रहा। बेसिकली हमें ये बात ये सिखाती है। जब हम सिरातुल मुस्तकीम की बात करते हैं तो फिर ये बात होती है। हमारे एक बड़े प्यारे से लिसनर हैं मोहसिन दुबई से, ये हमें सुनते हैं और इन्होंने मैसेज भी किया, थैंक यू वेरी मच। जो भी हमारे लिसनर्स हैं, मैसेजेस काफ़ी आते हैं आपको, बीच में आवाज़ आती रहती होगी लेकिन कोशिश की जाती है कि सबके मैसेजेस पढ़े जाएं, सबके मैसेजेस पढ़े जाते हैं और ये जो मैं बातें करता हूँ वो ये सारे बेसिकली वो मैसेजेस ही होते हैं आप लोगों के, जिनको मैं अपने अल्फाज में कन्वे करके आगे चलता हूँ। लेकिन मोहसिन ने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी ना एक उन्वान भेजा है एक ज़बरदस्त तरीके से कि बेसिकली इस चीज़ को कि रब नूं ते मनाउणा मुश्किल नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन जाता, यार जे राजी ना होवे नच नच के मनाना पैंदा है। और फिर बाबा बुल्ले शाह जब सूफीज़म की पीक पे जाते हैं ना और फिर जब इकबाल जैसी दरवेशाना रूह भी उनके मदे मुकाबल आ जाती है या हम असर हो जाती है या हम जमाना हो जाती है तो फिर बाबा बुल्ले शाह भी ये कहते हैं कि नच नच के यार मना लवीए, नच नच के यार मना लवीए, पावे लोक आखण पैड़ी कंजरी है, पहले यार नु मना। फिर उधर अलामा इकबाल की जो कलम है वो भी जुम्बश लेती है, वो कहते हैं बंदगी के इवज फिरदौस मिले, बंदगी के इवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, मैं लो से इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ये जो सूफियाना रंग है ना ये डिफरेंट होता है इश्क की, ये जो निज़ाम है इश्क की, ये जो मंजिल है ये इबादत से बहुत आगे आती है। और जब इबादत आपके अखलाक को संवारती है तो फिर एक ज़बरदस्त सी बात है कि किसी दरवेश से किसी ने पूछा ना किसी फ़कीर से कि इबादत क्या है,

लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

सीरियल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को एंजॉय किया होगा। वेल लिसनर्स, आप भी अपने पसंदीदा कलाम इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं। सो किस तरह से आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, सिंपली बता सकते हैं। वेल, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी सजेस्टेड कलाम्स को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाए और आप सभी के लिए वो तमाम चीज़ें प्ले की जाएँ जो आप असल में सुनना चाहते हो। सो वेल लिसनर्स, अब जरा बात कर लेते हैं हमारे उन लिसनर्स के जिन्होंने अभी तक इस खूबसूरत दिन का बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं किया था। सो आप सबको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छे खूबसूरत दिन का आगाज़ तभी मुमकिन है जब आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हर दिन की शुरुआत में आप एक अच्छा हेल्दी मील लें। किस तरह से ले सकते हैं, आप कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप मत करें। अच्छा, मैंने देखा है आजकल मेजॉरिटी आवाम क्या करती है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती है। इससे ये होता है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। सो जब आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है तब आपके अंदर वो हिम्मत और सकत नहीं रहती कि जिससे आप पूरा दिन काम काज कर सके, घर से बाहर निकल सके और बाहर की दुनिया को फेस कर सके। सो वेल लिसनर्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे दिन की शुरुआत करें एक हेल्दी मील के साथ। अगर आपका ज़्यादा दिल नहीं करता तो आप कुछ थोड़ा सा खा लें, लेकिन फिर भी घर से कुछ ना कुछ खा कर निकलना ही ज़रूरी है क्योंकि आपको चाहिए बेहद एनर्जी एक नए दिन की शुरुआत पे, एनर्जी बाहर के तमाम तर सिचुएशंस को, चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। सो वेल लिसनर्स, गेट वाइज तो हमारे उन सभी लिसनर्स के लिए है जो कि अभी अभी अपने इस दिन का आगाज कर रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं उन तमाम तरह लिसनर्स की जिन्होंने अभी तक इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है। सो आप सबके लिए वो तमाम तरह लिसनर जो कि अब इस वक्त अपने ऑफिस की तरफ, स्कूल की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ या फिर कॉलेज की तरफ हैं रवा दवा। सो अगर आप रास्ते में हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप अपनी डेस्टिनेशन के थोड़ा करीब करीब पहुंच चुके हैं, सो आप इस सफ़र को, इस ड्राइव को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद मेमोरेबल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपकी ये ड्राइव बन सकती है खूबसूरत। आप हमें ट्यून कर सकते हैं फ़ज़ा टैब पे। सो आप वहाँ पर हमारा साथ दे सकते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। सो वेल लिसनर, जल्दी से हमें ट्यून कीजिए और इस डेस्टिनेशन को बना लीजिए मज़ीद खूबसूरत। साथ ही साथ हमारे तमाम तरह लिसनर्स जो कि ड्राइव कर रहे हैं उन सबके लिए एक बहुत ही हमदर्दाना सी एडवाइस है कि जब कभी आप ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर क्या करें कि आपका पूरा फोकस, अटेंशन सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर हो क्योंकि ड्राइविंग इटसेल्फ इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश यही रखा करें कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जिस तरह का भी सिनेरियो चल रहा है या फिर आसपास कभी कभार ऐसा होता है कि हम डिफरेंट तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बेहद स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सो वेल लिसनर्स, आपने क्या करना है कि आपने उन तमाम तरह टेंशनों को, उलझनों को कर देना है थोड़ी देर के लिए साइड पे और अपना पूरा ध्यान रखना है ड्राइविंग पे क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और इसकी हिफाजत आपने खुद करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं, उनको कहीं पर जल्दी पहुंचना होता है और इस जल्दी के चक्कर में, जल्दबाजी में वो कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं। सो आपने कोशिश यही करनी है कि हमेशा टाइम लेकर घर से निकले ताकि आप आराम से ड्राइव करें और अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं क्योंकि ज़िंदगी बेहद अनमोल है और हो सकता है कि आपका कोई भी एक छोटा सा भी गलत कदम किसी और की ज़िंदगी के लिए बन जाए बहुत बड़े नुकसान का मूजब। सो ख्याल किया करें, एहतियात किया करें। सो वेल लिसनर, जैसे कि है आज फ्राइडे, सो फ्राइडे के हवाले से जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फ्राइडे एक बहुत ही अनमोल और मुकद्दस दिन समझा जाता है तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, यानी कि आज के दिन तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी इस दिन को इस तरह से देखते हैं जैसे कि अ गोल्डन चांस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको एक मौका फराहम करती है कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील कर ले, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, कामयाबी की मंजिलें ऊपर चढ़ें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सभी ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। सो वेल लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सो आज का टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बेहद रिलेट करता है। सो डेट इज़ द मेन रीज़न कि आज इसको हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। तो लिसनर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की ज़िंदगी से डायरेक्टली रिलेटेड है। और आज का हमारा टॉपिक है, आप सभी ने अभी तक गेस तो कर ही लिया होगा, लेकिन चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। सो आज हम बात करेंगे फिटनेस और इस्लाम में फिटनेस की वैल्यू, इन दोनों चीज़ों पर। तो लिसनर, जब कभी भी हम फिटनेस का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में जिम, एक्सरसाइज मशीन्स, रनिंग, वेट लिफ्टिंग और मस्कुलर बॉडी की पिक्चर्स आती हैं। लेकिन क्या फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना है? नहीं। क्या फिटनेस होने के लिए आपको बहुत ही एक्सपेंसिव जिम जाने की या फिर किसी भी जिम की मेम्बरशिप की ज़रूरत है, स्पेशल क्लॉथ्स की ज़रूरत है या फिर किसी भी स्पेशल डाइट की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इस्लाम हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में क्या सिखाता है। सो इसीलिए आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे ज़रा तफसील से।

सो बिल्कुल फिटनेस का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बल्कि अपने जिस्म को इस काबिल रखना है कि हम अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। इस्लाम हमें बैलेंस, क्लीननेस, मॉडरेशन और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तालीम देता है। हमारा जिस्म भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है और इस नेमत का ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि फिटनेस असल में क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है, इस्लाम इस हवाले से क्या गाइडेंस देता है हम सभी को, और हम अपनी बिजी रूटीन में हेल्दी हैबिट्स किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। रेडियो के वॉल्यूम को कंफर्टेबल रखिए और मेरे साथ इस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन का हिस्सा बन जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि फिटनेस असल में क्या होती है। सो ये समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है कि फिटनेस एक्चुअली होती क्या है। सो फिटनेस का मतलब है सिर्फ पतला होना नहीं, मस्कुलर दिखाना या फिर पर्टिकुलरली किसी भी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को हासिल कर लेना बिल्कुल नहीं। फिटनेस का ताल्लुक हमारी ओवरऑल फिजिकल फंक्शनिंग से होता है। एक फिजिकल फिट इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रिलेटिवली अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो मूवमेंट भी आसानी से कर सकता है, अच्छे से महसूस कर सकता है, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को मेंटेन करने की भी भरपूर कोशिश कर सकता है। सो वेल लिसनर्स, यहाँ पर फिटनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। सो इन सब में सबसे पहले आता है कार्डियो वैस्कुलर, यानी दिल और लंग्स की वो कैपेसिटी जो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद देती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी मसल्स की फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, यानी जॉइंट्स के मुनासिब रेंज में मूव करने का अंदाज। अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, जो चलने उठने बैठने और डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी बेहद मदद करता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो स्टेमिना, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को कुछ वक्त तक कंटिन्यू रखने की एबिलिटी। सो वेल लिसनर्स, ये है फिजिकल फिटनेस के वो तमाम तर एस्पेक्ट जो कि आपको ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि इस काबिल बनाते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के तमाम तर टास्क एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी मिसाल शेयर करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्टेयर्स चढ़ता है और उसे अपनी फिजिकल कैपेसिटी के मुताबिक मूवमेंट मैनेजेबल लगती है तो ये भी एक फिजिकल फंक्शनल का ही नाम है। मतलब फिजिकल फंक्शनिंग का नाम है, जहां आप जानते हैं कि आप किस मिकदार में और किस क्वांटिटी में खुद को मैनेज कर सकते हैं। अब एक और मिसाल आपके साथ शेयर करती हूं। अगर कोई पर्सन घर के काम करता है, मार्केट तक वॉक करता है, बच्चों के साथ खेलता है और अपनी रोजमर्रा के तमाम तर टास्क कंफर्टेबली परफॉर्म करता है तो ये एक्टिविटी भी फिजिकल वेलबींग से रिलेट करती है। इसीलिए फिटनेस को सिर्फ जिम के साथ एसोसिएट करना ठीक नहीं। वॉकिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, डांसिंग जैसी रिक्रिएटिव मूवमेंट, स्पोर्ट्स और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी फिजिकल एक्टिविटी के बीच में आ जाती हैं। सो ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप जानें कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए परफेक्ट है, सूटेबल है या नहीं, क्योंकि हर एक्टिविटी हर शख्स के लिए सूटेबल नहीं होती। इसीलिए अपनी हेल्थ और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आप अपनी एक्टिविटीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद गपशप होती रहेगी क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस की क्या वैल्यू है। इस हवाले से अगर आपका भी हो कोई भी सवाल या फिर आप अपना कोई भी पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए 01157100971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, सो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात।

वंस अगेन एक बार फिर से जी जो लिस्टर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कलाम? वेल, ये कलाम हमें एक बहुत ही हमारी प्यारी सी लिस्टर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था। सो आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने इस कलाम को शामिल किया प्रोग्राम में। इसी तरह से आप हमें खूबसूरत खूबसूरत कलाम लिखकर भेजते रहा करें और हम उनको इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। तो लिसनर्स, वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस की क्या अहमियत होती है। सो अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्दी एंड द फिजिकल फिटनेस के दोनों एक ही चीज़ है। सो आप सभी के लिए बताते चलती हूँ कि हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त एनर्जेटिक फील करते रहें, कभी थकन को फील ही ना करें, क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं और ह्यूमन नेचुरली थकता भी है, काम भी करता है, कभी कभी एनर्जेटिक भी फील करता है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान बेहद लो फील करता है, क्योंकि नींद, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन और कभी कभार हमारी हेल्थ कंडीशंस हमारी एनर्जी को भरपूर तरीके से अफेक्ट करती हैं। सो इन दोनों का आपस में लिंक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक हेल्दी इंसान ऑल द टाइम एक्टिव रहे, ऑल द टाइम एनर्जेटिक रहे, क्योंकि फिटनेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कोई भी कभी भी ओवरनाइट इसे अचीव नहीं कर सकता। आपको एक ही दिन में अपनी रूटीन कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी सी हैबिट से आप खुद को चेंज कर सकते हैं। कंसिस्टेंट हैबिट्स भी मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकती हैं। अब से हम बात कर लेते हैं इस्लाम और फिटनेस की अहमियत। सो ये है हमारा सबसे मेन पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस्लाम में फिजिकल हेल्थ और फिटनेस, इसकी आखिर क्या अहमियत है।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जी तो लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो कि आपके अपने ही फेवरेट रेडियो स्टेशन पर ऑन एयर होता है। जैसे कि कमर्शियल ब्रेक से पहले आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस की अहमियत। सो हमने सबसे पहले बातचीत की कि फिजिकल फिटनेस एक्चुअली होती क्या है और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस को किस कदर अहमियत दी गई है। अब जरा बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। जहां हमने डेली बेसिस की बात की, रोजमर्रा जिंदगी की बात की, इस्लाम की बात की, अब थोड़ा सा साइंस की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि फिटनेस सिर्फ मोटिवेशन का नाम नहीं, इसकी फिजिकल बेनिफिट्स पर भी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी दिल की सेहत को बेहद सपोर्ट करती है, मसल्स और बोन्स को मजबूत बनाने में मदद देती है और बैलेंस और मोबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है। सो फिजिकल एक्टिविटी टाइप 2 डायबिटीज और कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के रिस्क को भी बेहद कम कर देती है और आपको हेल्पफुल करती है कि आप उन डिजीज से बच सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज हर डिजीज को प्रिवेंट या क्योर कर देती है। हेल्थ पर जेनेटिक्स, एज, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, स्लीप, मेडिकल कंडीशन जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि इससे आपका मूड और मेंटल वेलबींग ये दोनों भी काफ़ी हद तक रिलेटेड है और मूड भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। कई लोग वॉक करने, स्पोर्ट्स खेलने या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के बाद अपने मूड में बेहतरी महसूस करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं और जैसे ही आप फिजिकली फिट होते हैं वैसे वैसे आप अच्छा और प्लेजेंट फील करते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन की सूरत में प्रोफेशनल सपोर्ट बेहद लाजमी है आप सभी के लिए। अब एक कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है, आप इससे अगर गुजर चुके हैं तो आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। इस सवाल को ज़रा लिसनर्स के ऊपर छोड़ देते हैं और ज़रा उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा कि व्हाट इज हाँ, तो मैं ये सवाल कर रही थी आप सभी से कि व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपको मालूम है तो आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू जवाब दे सकते हैं। जितनी देर में आप अपना फीडबैक या फिर जवाब हम तक पहुंचाते हैं उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक अदद खूबसूरत सा कलाम। कलाम भी वो जिसे सुनकर रूह ताज़ा हो जाए। तो आइए सुनते हैं ये कलाम। कलाम के उस पार हम ज़रा बात करेंगे इसके ऊपर।

0: वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुशामदीद। तो लिसनर्स, जैसा कि हम कमर्शियल ब्रेक से पहले और इंट्रैक से पहले बात कर रहे थे हमारे आज के टॉपिक की, और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल फिटनेस और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस की क्या अहमियत है। सो हमने सबसे पहले ये जाना कि फिजिकल फिटनेस एक्चुअली होती क्या है, और सेकेंडली हमने इस चीज पर फोकस किया कि किस तरह से इस्लाम फिजिकल फिटनेस की अहमियत को वाजिया करता है। सो अब जरा हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस किस तरह से साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है मेरे लिए, आपके लिए और हम सभी की जिंदगी के लिए। जैसा कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो आप में से बहुत से ऐसे लोग तो हैं जो कि इससे अवेयर हैं, लेकिन जो लोग इस टॉपिक से जो लोग इस चीज को नहीं जानते, उनके लिए आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो बेसिकली इस लाइफस्टाइल से मुराद एक ऐसी रूटीन जिसमें इंसान बहुत सारा वक्त बैठ के गुजारता है। सो इस एक्टिविटी में इंसान की बॉडी मूवमेंट बेहद कम होती है। सो जैसे कि आजकल हम सब बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई भी टास्क या फिर कोई भी काम परफॉर्म करना पड़े तो हम उसे बैठे बैठे कर लें, मूवमेंट कम करें, कम वॉक करें, कम चले फिरें। सो ये इसी लाइफस्टाइल में आ जाता है। सो वेल लिसनर्स, इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना होगा। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ रहें और आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर करते रहें। सो किस तरह से शेयर कर सकते हैं, 0115710971। चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने और वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
1: It's commercial time.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

are back. Welcome. वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनती हुई समातों को खुश आमदी। जी तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप ट्यून कर रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैप पे, जहाँ आपको मिलती है भरपूर इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ मेरी और आपकी होती है। और अगेन प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सो डेली बेसिस पर आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है, साथ ही साथ आपको कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सुनने को मिलता है। तो एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ 01157100971। ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ना सिर्फ हमारा व्हाट्सएप नंबर बल्कि ये है एक ऐसा रबते का जरिया जो आपको हमसे और हमें आपसे जोड़ता है। सो इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेकर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से, अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ ना आई हो, साथ ही साथ ये कि आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ, अगर आप हमें ट्यून करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को खूबसूरत, सो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। वो किस तरह से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल है और आप भी मेरी तरह ज़्यादा बातें कर सकते हैं, सो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बन सकते हैं इस फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, सो आप अपने डेली बेसिस के टास्क को उस हवाले से तरतीब दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस हासिल हो बिना किसी इंटरप्शन के, जहां आप कभी भी कहीं भी हमें बआसानी ट्यून कर सके, सो उसके लिए आपको इंस्टॉल करनी होगी हमारी एप्लीकेशन। सो हमारी एप्लीकेशन के लिए आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन, सो जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था फिजिकल फिटनेस और इस्लाम में फिजिकल फिटनेस की क्या अहमियत है, सो सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि फिजिकल फिटनेस एक्चुअली क्या होती है, और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके साथ कुछ आयात को शेयर किया गया और कुछ अहदीस मुबारक को। सो अब इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का। सो वेल, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इसके हवाले से अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ आई हो, या फिर किसी भी पॉइंट को लेकर आप हो थोड़े से भी कंफ्यूज, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे बेहद तवज्जो दिया करें, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से मुराद ये नहीं कि आप बस हर वक्त एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, बल्कि आप हेल्दी रहें। और हेल्दी आप किस तरह से रह सकते हैं, जब आप एक तनासब से चलेंगे और आपकी ज़िंदगी की जो साइकिल है वो प्रॉपरली परफेक्ट होगी, जहां आप हर चीज को प्रॉपर टाइम देंगे। क्योंकि जब आप हर चीज इक्वली प्रॉपर टाइम से मैनेजमेंट से करेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली ही फिजिकल फिट रहेंगे। सो वेल लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, विच इज कॉल्ड द स्पाइस किचन। सो जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई मजेदार सी चटपटी सी रेसिपी, सो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी। सो वेल लिसनर्स, रेसिपी को आपसे शेयर किया जाएगा, इसके लिए जल्दी से आप अपनी नोटबुक कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो जी लिसनर्स, जितनी देर में आप रेडी करते हैं अपनी नोटबुक, उतनी देर में हम सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा कलाम, और कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की रेसिपी को।

बाहर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी और चीज से फिल्ड होते हैं और बेस्ट हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए। और कभी भी अगर ऐसा हो कि अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए भी आप ये बना सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सो आप जल्दी से देख लीजिए कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर मौजूद हैं कि नहीं। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें दरकार, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 250 ग्राम बोनलेस, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 2 टेबलस्पून क्रीम या फिर चीज़, आप दोनों में से कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। नमक आप हसबे ज़रूरत अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी में। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, जिनको हम बिल्कुल बारीक सकट कर लेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। सो ये हो गए वो तमाम तर इंग्रेडिएंट जिनकी मदद से हम चिकन को प्रिपेयर करेंगे, मैरिनेट करेंगे और करेंगे रेडी। अब जरा बात कर लेते हैं कोटिंग की। सो कोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 कप ऑल पर्पज मैदा। सो साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, 1 कप ब्रेड क्रम्स, मोज़रेला चीज़ या फिर आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हम फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, आप इसमें भी अगर चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि हैं हेल्थ कॉन्शियस, तो वो चाहते हैं कि उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना आए, इसी के लिए आप इसे ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। सो मेरे लिसनर्स के थे वो सभी इंग्रेडिएंट जिनकी मदद से हम बनाएंगे इस रेसिपी को। आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई इंग्रेडिएंट आपसे हो चुका है मिस तो घबराने की कोई बात नहीं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपकी तमाम तरह क्यूरियस को दूर किया जाए।

सो वेल, इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब जरा देखते हैं फुल प्रोसीजर को कि किस तरह से झटपट हम इस रेसिपी को रेडी करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप नंबर 1 की जानिब। सो स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि चिकन को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसे अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे मायोनीज, क्रीम चीज, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, कैप्सिकम और ग्रेटेड मोजरेला चीज़। इन तमाम तरह को मिक्स करने के बाद हम कर लेंगे इनको अच्छी तरह से मिक्स।

लिसनर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर टू, जिसपे हम फिल करेंगे इस मिक्सचर में चीज़ को. सो सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है. फिर उन्हें छोटे छोटे बाउल्स की शक्ल में बना लेंगे.

सो अब हम इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़ क्यूब्स और इनको अच्छी तरह से क्लोज कर लेंगे। और अब हम अपने मिक्सचर को रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हमारा मिक्सचर बिल्कुल जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। सो इसके लिए हम 15 से लेकर 20 मिनट तक इसे फ्रीज़र में रख देंगे। इतनी देर में हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 के जाने बढ़ते हैं, जहां हम करेंगे क्रिस्पी कोटिंग। सो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम तर बॉल्स को फ्रिज से निकाल के रख लेंगे। सबसे पहले हम इन्हें अंडे में कोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर फिर उसके ऊपर हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर लगे, तो उसके लिए आप अंडे और ब्रेड क्रम्स वाली कोटिंग एक बार दोबारा से भी कर सकते हैं। सो इसी तरह एक से लेकर आप सभी बॉल्स को अच्छी तरह से कोट कर ले और अब इनको रख दें 5 से लेकर 6 मिनट तक। अब आ जाता है हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जहाँ हम इनको फ्राई करेंगे। सो मीडियम हीट पर हम इन्हें 2 से लेकर 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अच्छी तरह से जब आप इसको फ्राई कर रहे हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो, ना कि ज़्यादा डार्क ब्राउन हो, क्योंकि कहा जाता है कि वही रेसिपीज अच्छी लगती हैं जो कि दिखने में भी प्रेजेंटेबल हो। सो जब भी आप कोई नई न्यू रेसिपी ट्राई करें, तो आप मेक श्योर किया करें कि वो दिखने में भी प्रेजेंटेबल लगे, तभी आपके घर वाले उसे ट्राई करेंगे और उसे खाएंगे। सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वेल अगर इस हवाले से आपका हो कोई भी सवाल, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। वेल इसके साथ मेरे पास एक बहुत ही मजे की सॉस की रेसिपी थी, बट चूंकि अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है, तो वो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो रेसिपी आपसे शेयर करूं, तो उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपकी क्यूरी को दूर कर दूंगी। सो अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि ये रेसिपी मुझे किसने बताई है। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ इस रेसिपी के शेफ का नेम। सो वेल लिस्टर्स, ये रेसिपी है पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस शेफ अवैस शेख की। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये रेसिपी बहुत अच्छी है, तो आप इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। सो इसीलिए उनकी रिकमेंडेशन पर हमने ये रेसिपी आपसे शेयर की। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। लास्ट में ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है अपने इख्तिताम के करीब। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही आप सभी से यही कहूंगी कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो आपने कोशिश करनी है कि आज का दिन आपने बनाना है अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। किस तरह से आप बना सकते हैं कुछ अच्छा करके, स्टेप बाय स्टेप ही इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। सो अगर आप हर दिन थोड़ा बहुत कुछ भी प्रोडक्टिव करते हैं, तो वो आपको लीड करेगा एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर की जानिब। साथ ही साथ आज फ्राइडे है, सो अब आने वाला है वीकेंड। सो वीकेंड को भी अच्छे से स्पेंड करिएगा, एंजॉय करिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम करते हैं बेहद काम, और इन सब में हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। सो वीकेंड इज़ द परफेक्ट टाइम जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मंडे को एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए आप इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलो लिसनर, जाते जाते आप सबके लिए एक खूबसूरत सा कलाम प्ले कर देती हूँ। सो आप इस कलाम को एंजॉय करें और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। हम आप सुन रहे हैं लंच फॉक्स लंच वाज अपने सरराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक 2 बजे तक।

उस चीज़ की जिसका इंतज़ार तकरीबन हर इंसान को दिन के दरमियान ज़रूर होता है, और वो है हमारा लंच टाइम। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह घर से निकलते हुए लंच बॉक्स साथ लेकर आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दफ्तर पहुंचकर सोचते हैं कि आज खाने में क्या खाया जाए। कुछ लोगों के लंच बॉक्स में जो है वो घर के बने हुए पराठे होते हैं, किसी के पास जो है आलू की भुजिया होती है, किसी के पास जो है वो चावल होते हैं, किसी के पास सैंडविच होते हैं, और किसी के लिए एक कप चाय और बिस्किट भी लंच का बेहतरीन इंतज़ाम होता है। लेकिन सामीन, आज जो है मुझे एक बात बताएं कि क्या आपने कभी सोचा है कि घर के खाने में सिर्फ जायका नहीं बल्कि मोहब्बत भी शामिल होती है। माँ के हाथ का खाना हो, बहन के बनाए हुए सैंडविच हो, या किसी अपने के साथ किसी अपने के हाथ की जो है वो चाय, उन चीज़ों का जायका सिर्फ जुबान तक जो है वो महदूद नहीं रहता बल्कि यादों का हिस्सा भी बन जाता है। कभी कभी जो है वो स्कूल के दिन याद कीजिए, तो जब लंच ब्रेक की घंटी जो है वो बजती थी, सब दोस्त जो हैं वो अपने अपने लंच बॉक्स खोलते थे, कोई अपना खाना दूसरों को खिलाता था और कोई दोस्तों के पराठों का इंतज़ार करता था, और कोई जो है वो अपने लंच ख़त्म करके दूसरों के बॉक्स की तरफ देख रहा होता था। वो भी क्या खूबसूरत दिन थे रैना सामीन के, जब अपना लंच बॉक्स जो है वो घर से लेके जाना अपनी मर्जी का, लेकिन वहाँ पे जाके हमारा जो है वो माइंड चेंज हो जाना कि नहीं, अपना वाला नहीं खाना, वो जो दूसरे ने अपना बॉक्स खोला ना उसके अंदर क्या। और ये वैसे भी सबको क्यूरियोसिटी होती थी कि दूसरे के बॉक्स में देखा जाए कि उसके खाने में, उसके लंच बॉक्स में ऐसा क्या है जो आज मैं खा सकता हूँ, या ऐसा क्या है जो मुझे आज पसंद आने वाला है। सामीन, तो आज आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लंच बॉक्स में क्या है। घर का खाना है, बिरयानी है, पुलाव है, सैंडविच है, या फिर आज आपने बाहर से कुछ मंगवाया है। और हाँ, इसी के साथ साथ खाने के साथ पानी पीना भी याद रखिएगा। अगर ज़रा सा भी नवाला जो है वो गले में रुक गया तो खांसी लग सकती है, और फिर इसी के साथ साथ समझ तो गए होंगे आप। और आइए इसी खुशगवार माहौल को जो है वो बरकरार रखते हैं, और अपने सामीन के लिए खूबसूरत सा गीत जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, खूबसूरत सा कलाम शामिल करेंगे। मेरे पास जो है वो एक कलाम की फरमाइश आई है, लेकिन मैंने जो आज का प्रोग्राम में टॉपिक रखा था उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में जो है वो मेरे पास छोटा सा एक मैसेज रिसीव हुआ है, हमारा जो आज का टॉपिक था सब्र के हवाले से जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे कि किस की सूरत में जो है वो सब्र करना चाहिए। सब्र एक खूबसूरत हकीकत है, सब्र खामोशी नहीं बल्कि इबादत है। जब आप सब कुछ कह सकते हैं लेकिन ऊपर वाले की रजा के लिए खामोश रहते हैं, तो वो खामोशी भी जो है ना ऊपर वाले के हाँ इबादत लिखी जाती है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत से लोगों की किसी न किसी बात पर गुस्सा आता होगा, तो वो उस बात पर सब्र करते होंगे, और जब वो उस बात पर सब्र करते हैं ना, तो फिर वो ऊपर वाला जो है ना वो उसका अजर ज़रूर देता है, क्योंकि बेशक वो कहता है कि बाकी लोगों के पास जो है माल और दौलत होगी लेकिन सब्र करने वालों के साथ रब की ज़ात खुद होगी। सब्र का मतलब इंतज़ार नहीं बल्कि यकीन है। सब्र करने वाला इंतज़ार नहीं करता, वो यकीन रखता है कि जो ऊपर वाले ने लिखा है वो बेहतरीन होगा। ऊपर वाले अपने प्यारे बंदों को आजमाता है ताकि वो मजीद जो है ना वो मजबूत बन जाएं, और जैसे सोना आग में तप कर ही जो है वो खालिस बनता है ना, उसी तरह इंसान भी सब्र करके जो है ना वो पावरफुल बन जाए, मजबूत हो जाए। दुनिया में जो है ना हर चीज़ का बदला मुकम्मल जो है हो मिल सकता है, लेकिन सब्र का बदला जो है ना वो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात ही दे सकती है। जो आज सब्र करेगा कल जो है ऊपर वाले की ज़ात उसके दिल को ऐसा सुकून देगी, वो अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। सामीन, बहुत ही ऐसी जगह होती हैं, बहुत ऐसे मुकामात होते हैं
جہاں پر جو ہے وہ انسان کو صبر کرنا پڑ جاتا ہے, اور جو چونکہ وہاں پہ صبر کرنا بنتا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی انسان جو ہے نا وہ چھپ کر کے صبر کی طرف چل پڑتا ہے, تو اس کا جو اجر ہے نا وہ اوپر والے کی ذات آپ کو دے گی, اور پھر وہ ایسا آپ کو اجر ملے گا

0: commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

याद रखें कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े तोहफों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जो है वो एक प्यार भरा जुमला, कभी किसी की बात तवज्जो से सुन लेना, और कभी बिना किसी वजह की जो है वो खैरियत पूछ लेना, या फिर बिना किसी बात के कह देना कि चलो आओ बैठ कर आज चाय पीते हैं। ये भी बहुत होता है। सामीन, आज का सवाल आपके नाम कि अगर आपको अपने किसी एक दोस्त के साथ बैठकर चाय पीने और दिल की बात करने का मौका मिले तो आप किस दोस्त को याद करेंगे? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ लोग जो है हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त नहीं होते बल्कि हमारी खूबसूरत यादों का हिस्सा होते हैं। और इन्हीं खूबसूरत यादों को साथ लेकर चलते हैं एक और कलाम की जानिब, जब तक आप मुझे सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए जो है वो एक छोटी सी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करते हैं।

सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं आतिफ असलम और समी यूसुफ की आवाज़। इस आवाज़ के उस पार में रहेगी आपसे मुलाकात। सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है, इसके हवाले से मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा उस खास दोस्त का नाम। अभी के लिए इस खूबसूरती आवाज़ को सुनते हैं, इसके उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों पर रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खूबसूरत आवाज़ पसंद आई होगी। उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हम सब की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, और वो है छोटी छोटी खुशियों की अहमियत। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब हमें कामयाबियां मिल जाएंगी, जब हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तब हम खुश होंगे। सवाल ये है कि क्या खुशी को हमेशा मुस्तकबिल के लिए जो है वो संभाल के रखना चाहिए? हम अपनी ज़िंदगी के कितने ही खूबसूरत लम्हे सिर्फ इसी इंतज़ार में, इसी सोच में गुजार देते हैं कि एक दिन सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। हालांकि खुशी जो है वो हमेशा किसी बड़ी कामयाबी में नहीं होती। कभी कभी जो है वो सुबह की ताज़ा हवा में होती है, कभी कभी घर वालों के साथ बैठने में, कभी कभी किसी पुराने दोस्त की कॉल आने में, और कभी कभी जो है ना पसंदीदा गाना सुनने में, या फिर कभी कभी कोई पसंदीदा कलाम सुनने में, कभी कभी किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में होती है। हमें जो है वो हर रोज़ कोई ना कोई छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर देती है, लेकिन अक्सर हम जो है वो बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोसामीन, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो तभी आप दूसरों के लिए खुशी का सबब बन सकें। कभी कभी जो है वो किसी की तारीफ़ कर दें, किसी की हौसला अफजाई कर दें, किसी की बात सुन लें, या कोई किसी उदास इंसान को मुस्कुराने की वजह बन जाए, ये भी किसी खुशी से कम नहीं है। यकीन कीजिए, ये छोटे छोटे काम भी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि खुशी का तलक हमेशा हालात से नहीं होता। कभी कभी जो है खुशी का तलक हमारे रवैये और हमारे जो है वो नुक्ता नज़र से भी होता है।

आज अपने लिए जो है ना एक छोटा सा वादा, अपने साथ एक छोटा सा वादा कीजिए, अपने लिए एक छोटा सा वादा कीजिए कि आप रोज़ाना किसी एक अच्छी चीज़ को ज़रूर महसूस करेंगे, किसी एक शख्स के लिए आसानी पैदा करेंगे और अपने लिए भी चंद लम्हे निकालेंगे। उसी के साथ साथ मैंने प्रोग्राम में एक सवाल रखा था कि अगर ज़िंदगी आपको मौका दे कि आप किसी दोस्त के साथ बैठकर चाय पिए या फिर उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करें, तो वो आपका ऐसा कौन सा दोस्त होगा, तो मुझे बड़े खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है जी। हमारी लिस्नर है बड़ी खूबसूरत सी और पाकिस्तान से, कराची से हमें सुन रही है सना। वेलकम सना, आपने प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाया। और सना ने जी बोला है कि मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी फ्रेंड है और उसका नाम है जोया, उसके साथ ज़िंदगी जो है वो आसान लगती है। ओ वेरी गुड, और होता भी है ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी का एक बोझ जो है वो हल्का महसूस होने लगता है। थैंक यू सर जो है सना, आपने प्रोग्राम में शामिल होकर इस खूबसूरत से सवाल का जवाब दिया। के साथ साथ जो हमारा आज का टॉपिक था वो था सब्र, और अगर इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाएं तो मुझे बेहद खुशी होगी। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया इसी टॉपिक पे कि सब्र कर तेरा वक्त भी आएगा, जो आज तेरा नहीं कल तेरा ही कहलाएगा। अल्लाह ने देर की है अंधेर नहीं की, तेरी दुआ रद्द नहीं की बस थोड़ी सी देर की है। तो सामीन, जब सब्र करने वालों को ऊपर वाली की जात नवाजती है ना खुशियों से, नेमतों से, तो वो सारे गमों को भूल जाता है। सामीन, मैं आज के दिन आपको एक खूबसूरत सा पैगाम देना चाहती हूँ, एक छोटी सी राय देना चाहती हूँ कि सब्र जो है वो कड़वा ज़रूर है लेकिन इसका फल सबसे मीठा है।

0: सवर जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया। आप तमाम नई समातों का प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार आपको बता देते हैं 01157100971 इस नंबरों कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्र, और उसी के साथ साथ हम लंच बॉक्स की भी बात कर रहे हैं। अभी जो है प्रोग्राम में एक छोटे से कलाम के प्रोग्राम में शामिल करने का समय आ पहुंचा है।
1: मैं अली
0: वाली का सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड ऐप को।
1: उसी ताज
0: मिलते हैं इस खूबसूरत से कलाम के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवल सामीन, आप प्रोग्राम एक खूबसूरत सा कलाम शामिल किया था एक छोटी सी फरमाइश पे। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये कलाम पसंद किया होगा, आपको सुनकर अच्छा भी लगा होगा। अब बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की जानिब, यानी कि एक अगली बात की जानिब। अब ज़रा संजीदा बातों से हर निकल कर कुछ मज़े की बातें हो जाएं, क्योंकि लंच बॉक्स में जो है वो खाने का जिक्र भी तो बहुत ज़रूरी है। सवल सामीन, मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बेहतरीन लंच कौन सा है? बिरयानी, निहारी, दाल चावल, आलू के पराठे, या फिर घर की बनी हुई सादा सी सब्जी और रोटी?

जैसे खाने की पसंदीदा थोड़ी अजीब ही होती है, किसी को बिरयानी के बगैर जो है वो दावत अधूरी लगती है, किसी को चाय के बगैर जो है दिन शुरू नहीं होता, और किसी को जो है वो घर की दाल ऐसी पसंद होती है कि बड़े बड़े जो है होटलों का खाना भी उसके सामने फीका लगता है। और दफ्तर के लंच बॉक्स की तो एक अलग ही बात है, क्योंकि अलग ही कहानी है। कभी जो है घर से खाना लेकर आते हैं और दोस्तों के साथ दोस्तों को कहते हैं कि ज़रा हमें भी चखाओ अपना खाना, अपना लंच बॉक्स दिखाओ। कभी अपना खाना जो है वो खोलते हैं तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, और कभी जो है वो लंच बॉक्स घर पर ही रह जाता है, और कभी कभी जो है वो फिर सारा दिन जो है यही सोचते हैं कि अब क्या होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बचपन में ये चीज़ हुई थी कि मतलब उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं सुबह लंच बॉक्स में ये लेकर जाऊँगा, तो सुबह जाते हुए वो चीज़ बनवा तो ली लेकिन लंच बॉक्स घर भूल गए। तो ये किस किस के साथ हुआ है, मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि खाने की असल खुशी जो है ना सिर्फ खाने में नहीं है, बल्कि इस माहौल में भी होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। अगर घर वाले साथ बैठे हों, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो या किसी अपने के साथ सुकून से खाना खाया जाए, तो सादा सा खाना भी जो है ना वो बहुत खास लगने लगता है। चले सामीन, एक बड़े दिलचस्प सा सवाल है आप सबसे कि अगर आपको एक दिन के लिए अपने पसंदीदा खाना खाने का मौका मिले तो आप को सिर्फ एक डिश जो है वो चूज करनी होगी, और वो कौन सी होगी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक चीज़ तो कभी भी किसी को पसंद नहीं होती, और हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या आप खाना खुद बनाना पसंद करते हैं या फिर किसी के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि खाने की पसंद भी हमारी जो है शख्सियत और यादों के बारे में बहुत कुछ बताती है, और इससे जुड़ी बातें जो हैं वो हमें याद आती हैं कि उस टाइम पे हमने ये वाला खाना बहुत ज़्यादा खाया था, ये ज़िद करके ये वाला खाना मंगवाया था। सामीन, अब आते हैं एक ऐसी बात की तरफ जिसे हम सब जानते हैं तो हैं, लेकिन अक्सर जो है अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल नहीं कर पाते, और वो बात ये है कि अपने लिए वक्त निकालना। हम में से बहुत से लोग जो हैं वो पूरा दिन दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में गुजार देते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ, दफ्तर का काम, पढ़ाई, रिश्ते, दोस्त और रोज़मर्रा की जो है वो मसरूफियात, उन सब के दरमियान जो है हम कभी कभी खुद को वक्त देना भूल जाते हैं। अपने लिए वक्त निकालें, और अपने लिए वक्त निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर हो जाएंगे या दूर हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़हनी ताज़गी जो है ना, अपनी पसंद और अपनी जो है ज़ाती नशोनुमा को भी अहमियत दें। कभी कभी जो है ना कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, कभी जो है वो अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए, कभी अपनी पसंद की चाय पी लीजिए। मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको अब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइप्स में चाय पसंद होती है, कभी जो है कुछ नया सीख लीजिए, और कभी जो है वो खामोशी से बैठकर अपने दिन के बारे में सोचें कि आज दिन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सबसे बेस्ट थी। ये छोटी छोटी आदतें आपको छोटी छोटी आदतें जो है ना, ये आपको अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात सीखने और ज़िंदगी में जो है वो तवाज़न पैदा करने में मदद दे सकती है। और सबसे अहम बात जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी का जो है मुवाज़ना दूसरों की ज़िंदगी से ना कीजिए। हर इंसान का सफ़र जो है वो मुख्तलिफ होता है, किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है और किसी को वक्त लगता है, किसी के हालात जो है वो आसान होते हैं, किसी को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपनी रफ्तार से आगे बढ़ें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी छोटी कामयाबियों की भी कदर कीजिए, क्योंकि तरक्की का मतलब हमेशा जो है वो तेज़ चलना नहीं होता, बल्कि दुरुस्त सिमत में मुसलसल आगे बढ़ना भी तरक्की है।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

साथ वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, जहां पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। और तकरीबन मेरा आपके दरमियान अब काफ़ी कम वक्त रह चुका है। और बता देते हैं कि जिन नए लोगों ने आज और भी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम मेरी समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका अगर आपको बता देते हैं, 01157100971 इस नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजल 97.1 एफएम के नाम से, और इसी के साथ साथ गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofazal.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है। सो मेरे प्यारे सामीन, हमारी ये खूबसूरत महफिल अब अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो है, जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि ज़िंदगी में हर दिन ऐसा जो है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन खुशियों से भरे होते हैं और कुछ दिन हमें सब्र, समझदारी और हौसला सिखाते हैं। लेकिन हर दिन में जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम सीख सकते हैं। इसीलिए अपने आज की कदर कीजिए, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, अपनी सेहत और सुकून का ख्याल रखें, और जहां मुमकिन हो किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा कीजिए। और याद रखें कि ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत तब बनती है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का सबब बनना सीख लेते हैं, और किसी की खुशी की वजह बनना ये बहुत बड़ी बात है, किसी ऐसे इंसान की खुशी की वजह बनना जो आपको जानता भी ना हो। सामीन, मैंने अपना लास्ट एक म्यूज़िक का रखा होता है, और अभी जो है वो चले, अब महफिल जो है महफिल को एक खूबसूरत कलाम की जानी लेकर चलते हैं। अभी एक खूबसूरत आवाज़ आपके अपने दरमियान शामिल करूँगी। आवाज़ है जी आबदा परवीन की और नसीब लाल की आवाज़। और आइए सुनते हैं इस कलाम को, इस कलाम के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फजल 97.1 एफएम एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। आज का हमारा टॉपिक था सब्र, और सब्र के हवाले से आपके साथ जिसका सामने की काफ़ी ज़्यादा हमारा मतलब टॉपिक अच्छे से लेकर चले हम आज के प्रोग्राम की जो है मैं आखिरी बात आपके साथ शेयर करते चलूँ कि सब्र जो है वो इंतज़ार का नाम नहीं बल्कि हर हाल में ऊपर वाले पर भरोसा करने का नाम है। ज़िंदगी में जो है ना ये दो चीज़ें याद रखें कि कभी दो चीज़ें जो है ना कभी ख़त्म नहीं होती, एक तो ऊपर वाले की रहमत और दूसरा सब्र का सिला। अगर आज आप किसी चीज़ के लिए सब्र कर रहे हैं, किसी तकलीफ, किसी दुआ या किसी अपने के लिए, तो बस इतना याद रखें कि ऊपर वाले की ज़ात जो है ना वो इस सब्र का अज़र आपको ज़रूर देगी, और ऊपर वाले की ज़ात सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। बेशक जब वो कहता है कि बाकी लोगों के पास माल और दौलत होगी, लेकिन सब्र करने वालों के साथ रब की ज़ात खुद होगी। तो आज के इस जुम्मे के दिन के सदके जो है दुआ करेंगे सबके लिए कि ऊपर वाला हम सबके सब्र को कबूल करे और हमें हमारी सोच से बढ़कर अता करे।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को लंच बॉक्स लाउंज में। सवाल मेरे प्यारे सामीन, अब इजाज़त चाहूँगी आपसे, लेकिन जाने से पहले आप सब का जो दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाला, आपने प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाया, आपने अपने दिन के इन खूबसूरत दो घंटों में हमें वक्त दिया, हमारी बातें सुनी और लंच बॉक्स की इस महफिल का हिस्सा बने। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी होगी, आपको कुछ नया सोचने का मौका दिया होगा और आपकी दोपहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाया होगा। सो याद रखिएगा कि ज़िंदगी की खूबसूरती हमेशा बड़ी कामयाबियों में नहीं

कभी कभी जो है वो घर वालों के साथ खाना खाने में, कभी कभी जो है वो दोस्तों के साथ हंसने में, कभी किसी की मदद करने में, और कभी अपने लिए चंद लम्हे निकालने में भी ज़िंदगी की एक असल खुशी छुपी होती है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सलूराज और आप सुन रहे हैं रेडियो फ़ज़ा के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम लंच बॉक्स लाउंज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे हम वीकेंड के उस पार, वीकेंड के बाद जब मिलेंगे तो आपसे देर गपशप रहेगी मेरी, और यही कि मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड फ़ज़ा 107.1 FM, हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरा और आपका अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती।

ना मैं तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

यह कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slusser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slusser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beat.
7: Wow FM.
8: Only Tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: get ready to move.
1: It's all about the beats. Wow,
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

सामने मुकर्रम जाते हुए रास्ते में कहीं कयाम पजीर होते हैं कि अचानक डाकू उन पर हमला कर देते हैं। काफिले के साथ थे और काफिले को लूट लिया जाता है, और जब डाकू पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी की तरफ आते हैं तो कम सिन बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे बता तेरे पास क्या है। बच्चा निगाहें झुकाकर अदब से जवाब देता है, मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं। और वो कुर्ते के बाएं जानेब इधर मेरी मां ने सील रखी हैं। काकू हैरान होकर ताज्जुब से फिर पूछता है, बेटा तू क्या कह रहा है? तो शेख अब्दुल कादिर जलानी इस पर जवाबन कहते हैं, जी हां, मेरे पास 40 अशरफियां हैं और मेरे कुर्ते के बाएं जानब मेरी मां ने सील रखी हैं। साबिन मुकर्रम डाकू जब तलाशी लेते हैं तो बच्चे की जेब से वाकयातन 40 अशरफियां निकलती हैं। डाकू का सारा हमला इस पर परेशान हो जाता है और बच्चे से सवाल करते हैं कि तुम झूठ बोलकर अपनी इन अशरफियों को बचा भी सकते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी जो उस वक्त कम सिन थे जवाबन कहते हैं कि जब मैं सफर पर निकला था तो मेरी वालिदा ने मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना और सच का दामन थामे रखना। मैंने अपनी वालिदा के उस हुक्म की तामील की है। समय मुकर्रम ये बात सुनते ही डाकू के सर शर्म से झुक जाते हैं, इस बात पर मलाल करते हैं कि एक बच्चा जो अपनी वालिदा के हुक्म को इस तरह मान रहा है कि झूठ नहीं बोल रहा, उसे जिंदगी की परवाह नहीं, माल लो दौलत की परवाह नहीं, एक हम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील नहीं कर रहे। डाकू उसी वक्त अपना किबला दुरुस्त करते हैं। ये करामत पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जलानी के आगाज़ ज़िंदगी की है।

की मेराज पर पहुंचता है। तरीकत से फिर हकीकत का सफर होता है और हकीकत से फिर मारफत का। और हजरत गौसे आजम दस्तगीर मारफत की मेराज पर थे।

जी वेलकम बैक। और आप ट्रैक सुन रहे थे मन मनकबत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आज़म की बरगाह में। अल्लाहु अकबर। तेरा जलवा नूर खुदा गौसे आज़म, तेरा जलवा नूर खुदा गौसे आज़म, तेरा चेहरा ईमा फजा गौसे आज़म। खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, दे ऐसी फना हो बका गौसे आज़म। खुदी को कमाऊं तो मैं हक को पाऊं, खुदी को घुमाऊं तो मैं हक को पाऊं, मुझे जामे इरफां पिला गौसे आज़म। खुदा साज आईना हक नुमा है, खुदा साज आईनाए हक नुमा है, तेरा चेहराए पुरसया गौसे आज़म। न तो खुद खुदा से न हक से जुदा है, न तो खुद खुदा है और न हक से जुदा है, खुदा की है तू शान या गौसे आज़म। तू बाग अली का है वो फूल जिससे दिमाग जहां बस गया गौसे आज़म। तेरा मर्तबा क्यों ना आला हो मौला, है महबूब रब्बुल औला गौसे आज़म। तेरा रुतबा अल्लाह अकबर सरों पर, कदम औलिया ने लिया गौसे आज़म। न क्यों मेहरबान हो गुलामों पे अपने, करम की है तू कान या गौसे आज़म। तेरे सदके जाऊं मेरी लाज रख ले, तेरे हाथ से लाज है या गौसे आज़म। और परेशान करते परेशानियों को, परेशान करते परेशानियों को, परेशान दिल है मेरा गौसे आज़म। मेरी कश्ती चकरा रही है बमर में, मेरे ना खुदा पाक खुदा गौसे आज़म। खुदा रा सहारा सहारा खुदा रा, तला तुम है हद से सवा गौसे आज़म। खताएं हमारी जो हद से सवा हैं, अथाह तेरी उनसे सवा गौसे आज़म। खताकारियां गरचे हद से भी अपनी, सवा हैं सवा हैं सवा गौसे आज़म। हमारी खता को तुम्हारी अता से भला कोई निस्बत भी या गौसे आज़म। तू रहमो करम का है पे पाया दरिया, ये एक फर्द इसियां है या गौसे आज़म। जी हाँ ये एक फर्द इसियां है, क्या तेरे आगे अगर लाखों से हूं सवा गौसे आज़म। तेरा एक ही कतरा धो देगा सारा, हर एक सफा पर खता गौसे आज़म। तू बेकस का कस और बेबस का बस है, तू बेकस का कस और बेबस का बस है, तवाना तू आना तू तवानों की या गौसे आज़म। मेरी जान में जान आए जो आए, मेरा जाने आलम मेरा गौसे आज़म।

सर तेरी कफश पा पर तसद्दुक, वो पा के तो काबिल है यगौसे आसा। झलक रुए अनवर की अपनी दिखा कर, तो नूरी को नूरी बना गौसे आसा। तेरा जलवा नूरे खुदा गौसे आसा, तेरा चेहरा ईमान फजा गौसे आसा। मुझे बेगुमा दे गुमा गौसे आसम, ना पाऊं अपना पता गौसे आसम। खुदी को मिटा दे खुदा से मिला दे, ते ऐसी फनाओ पका गौसे आसम। सबिन मुकर्रम, आज का सुफियाना सफर इसी दुआ इसी इल्तजा से खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे एक नए सूफी का तज़किरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस सूफी के जिंदगी के अहवाल, जिंदगी के वाकयात, हकायात और किस तरह से दीन की तरवीज और इशात में उनका नाम, उनका काम, इन तमाम चीजों का तज़किरा करेंगे। प्रोग्राम सुफियाना सफर का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपने मेजबान हुनैन मसूद को अगले जुमे तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले जुमे एक नए सुफियाना सफर में एक नए सूफी बुजुर्ग के साथ हुनैन मसूद आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM एंड एप। अस्सलामुअलैकुम।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ni botle azool diye hai ni botle azool diye ni tera koi muqabla nahi
1: it's commercial time
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Bigger, bigger and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: It's music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.

0: धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।
1: Yeah.

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: सुनते रहिए Radio Fazaa 97.1 FM.

0: प्यार कर।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा 97.1 FM। एंजॉय सॉन्ग्स इन मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू, ओनली इन डेडिकेशन आवर। कुमार सानू।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham. Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You're listening to 97.1 FM. This is Radio Fazer.